प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई।

0: लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित एलआईसी निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमडीएल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी विविध भारती केंद्र समयం 6:05 ఇప్పుడు అర్చన కార్యక్రమంలో క్షేత్రదర్శిని వింటారు.

0: ట్యూన్ చేసుకోండి మీ వివిధ భారతి 102.8 ఎఫ్ఎం లో.
1: బృందావనమది అందరిది గోవిందుడు అందరి వాడేలే.
2: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 8 గంటలు, సమాచార్ ప్రభాత్.
3: ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాథ్ మే విశాల్ శర్మ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर. रिजर्व बैंक ने कहा भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि. और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे. एक रिपोर्ट.
4: 20वां रोजगार मेला देश भर की 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा. इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे. इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है. इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं. रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है. अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
3: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है. इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे. सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं. ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा. विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई. लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी. बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए.
5: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली. सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे. हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है. हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे. होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी. जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की.
3: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल

0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
1: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए, नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी, एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने ओसीएम्स और एपीडी जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
3: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। IIT मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के CEO और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
4: The government is supporting the sector through technology transfers.
5: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
3: गैलेक्सी आई के CEO सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है।

0: ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर 221 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई।
2: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में 14 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 18 अरब डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
3: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला, दो उपचुनावों के लिए अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%,

0: दैनिक भास्कर लिखता है ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में एएसआई की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व

सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आपने सुना धड़क टू फिल्म का गाना, स्वर दिया दर्शन रावल और जोनिता गांधी ने, गीतकार गुरप्रीत सैनी, संगीत दिया रोचक कोहली और शरण रावत ने। आइए सुनते हैं चित्लो कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने सुना सिटी लाइट फिल्म का गाना, जिसे गाया अरिजीत सिंह ने और गीत की रचना की रश्मि सिंह ने और संगीतकार जीत गांगुली।

अभी आपने सुना फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का गाना, स्वर मिथुन अरिजीत सिंह, शाशा तिरुपति, गीत रचना मनोज मुंतशिर, स्वर दिया मिथुन ने। चितलोक कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक ब्रेक का।

ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते अगला गाना।

0: माही गाना आपने सुना फिल्म इरादा से। आवाजें थी इसमें हर्षदीप कौर, शबाब साबरी, गीतकार समीर अंजान, संगीतबद्ध किया नीरज श्रीधर ने।
1: नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
2: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
1: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहाँ पहले मेरे भाई थी।
2: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने सुना सत्यमेव जयते टू का गाना। स्वर है जुबिन नौटियाल, नीति मोहन, गीतकार मनोज मुंतशिर, नासिर काजमी, संगीतकार रोचक कोहली। चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। अपनी दोस्त को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ये कैसे बना ये गाना।
1: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
1: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: श्रोताओं नमस्कार। कुछ आवाजें हमें रूहानी एहसास करवाती हैं, तो कुछ आवाजें हमें हमसे ही मिलाती हैं। एक ऐसी ही रूहानी, दिल को छूने वाली आवाज की बात आज हम करने वाले हैं। उस आवाज ने हमें सहलाया, दुलारा और खुद से प्यार करना भी सिखाया। आज बात लाखों दिलों को छूने वाली आवाज के मालिक जुबीन गर्ग की। जुबीन गर्ग के लिए एक बात कही जा सकती है कि वो कोई आम गायक नहीं, बल्कि आम जन के दिलों को छूने वाली आवाज रहे। उनकी लोकप्रियता की कहानी बताने से पहले उनके जीवन की कहानी को जानना भी जरूरी है। 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में मजिस्ट्रेट मोहिनी मोहन बोर ठाकुर और गायिका अभिनेत्री ईली बोर ठाकुर के घर जन्मे जीबोन बोर ठाकुर, जिन्हें हमने जाना, पहचाना और सराहा जुबीन गर्ग के नाम से। इस नाम की कहानी भी संगीत से ही जुड़ती है। जीबोन बोर ठाकुर ने अपना नाम चुना पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के विश्व प्रसिद्ध पहले भारतीय कंडक्टर यानी ऑर्केस्ट्रा संचालक जुबीन मेहता के नाम से। ये एक तरह से उनके प्रति सम्मान था और उस नाम के पीछे लगाया अपना गोत्र नाम, और इस तरह वो बन बैठे जुबीन गर्ग।

जुबीन को संगीत बचपन से ही घर में मिला। पिता मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ कपिल बोर ठाकुर के नाम से कविताएं और गीत लिखा करते। माँ इली बोर ठाकुर गायिका तो थी ही और उन्होंने ही संगीत का बीज नन्हे जुबीन के मन में बोया। 3 साल के थे तभी से माँ ने जुबीन को संगीत सिखाना शुरू कर दिया। थोड़े बड़े हुए और पंडित रॉबिन बनर्जी से तबला सीखने लगे। बाद में उन्होंने रमानी राय से असमिया लोक संगीत की तालीम भी ली। स्कूल के दिनों से ही जुबीन गानों की धुन तैयार करने लगे थे। जब 3 साल के थे तभी पहले गीत की धुन तैयार की थी। वो गीत था गाने की आने और उसे उन्होंने अपने पहले एल्बम अनामिका में शामिल भी किया। कई गीतों वाला ये एल्बम जुबीन ने लॉन्च किया जब वो 19 साल के थे। इसी साल उन्होंने अपने वेस्टर्न सोलो परफॉर्मेंस से यूथ फेस्टिवल में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया था।

अनामिका के बाद जुबीन ने और भी कई एल्बम लॉन्च किए, जैसे माया, आशा, पाखी। ये सभी गीत लोगों ने पसंद किए। जुबीन की आवाज की ईमानदारी, सीधे दिल को छूने की गहराई और लोक गीतों की मिठास उनकी आवाज को लोगों के दिलों तक पहुंचाती रही। बिहू के मौके पर लॉन्च किया गया उनका एल्बम उजन प्रीति सुपरहिट रहा। जुबीन ने इसी समय एक बड़ा कदम लिया। अब तक असमिया और बांग्ला भाषा में गाते जुबीन ने हिंदी गीतों की ओर रुख किया, क्योंकि मौका था कुछ बड़ा करने का। और यही ठानकर जुबीन अपनी जादुई आवाज के साथ आ पहुंचे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई। 1995 में 22 साल के जुबीन यहां आए और एल्बम चांदनी रात, श्रद्धांजलि, यूं ही कभी जैसे कई एल्बमों में उन्होंने गीत गाया। साथ ही गद्दार, पुरानी कब्र, डोली सजा के रखना, फिजा, कांटे जैसी कई फिल्मों में भी जुबीन की आवाज गूंजी।

जुबेन को लगातार काम मिलता रहा। मुद्दा, चुपके से, मुंबई से आया मेरा दोस्त, जाल जैसी फिल्मों में भी उनके गीत आए। लेकिन बात वही थी कि जुबेन की आवाज को सराहा गया, लेकिन अब भी वो बुलंदी और पहचान नहीं मिली थी जिसके वो हकदार थे। फिर साल 2006 में आई फिल्म गैंगस्टर, और आते ही या अली गीत में जुबेन की आवाज गूंजी तो जैसे सभी उनके साथ झूम उठे। इस गीत की लोकप्रियता का आलम यह है कि उसकी गूंज आज तक कायम है। जुबेन इस गीत में नजर भी आते हैं। ये गीत उनकी पहचान बन गया।

जुबीन को इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड भी मिला। इसके बाद जुबीन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई यादगार गीतों को अपनी आवाज दी, जैसे बिग ब्रदर में उस्ताद सुल्तान खान के साथ गाए उनके गीत जग लाल लाल ने भी धूम मचाई। जुबीन ने न सिर्फ हिंदी बल्कि असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी और भारत के उत्तर पूर्वी भाग की कई लोक भाषाओं के साथ तकरीबन 40 भाषाओं में 32,000 से अधिक गीत गाए। जितनी भाषाएं उतने ही भाव, भक्ति गीत, लोक गीत, गम, खुशी, प्यार जैसे हर भाव के गीत जुबीन की आवाज में मौजूद हैं। जुबीन जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में कामयाब रहे, वहीं वो अपनी मिट्टी से भी उतनी ही दृढ़ता से जुड़े रहे। उन्होंने पूर्वोत्तर की तकरीबन 250 लोक जातियों से जुड़कर उनके लोकगीतों को एक नई पहचान दी, उसे लोगों के सामने लाने में बड़ी भूमिका निभाई।

यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि जुबीन गर्ग केवल एक आवाज ही नहीं बल्कि संगीतकार, गीतकार, म्यूजिक प्रोड्यूसर, अभिनेता, फिल्म निर्माता, स्क्रिप्ट राइटर भी रहे। बचपन से ही संगीत से लगाव इतना था कि अलग अलग भाषाओं और लोकगीतों से जुड़ाव तो रहा ही, साथ ही वाद्यों से भी उनका लगाव अनोखा था। उन्हें तकरीबन 12 किस्म के वाद्यों में महारत हासिल थी। ढोल, दो तारा, ड्रम, गिटार, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम, मैंडोलिन, कीबोर्ड, तबला और कई तरह के ताल वाद्य उनके संगीत के जादू के साक्षी थे।

कलाकार का जीवन जितना लोगों के सामने होता है उससे भी ज्यादा गहराई उनके मन में होती है। कुछ ऐसा ही मन जुबिन गर्ग का भी महसूस होता है। मुंबई जैसे सपनों की नगरी में कोई भी एक बार आता है तो बस यहीं का होना चाहता है, लेकिन जुबिन ने यहाँ बसना नहीं चाहा। वो अपनी मिट्टी से इतना लगाव रखते थे कि वो कहीं भी रहें उन्हें वापस अपनी मिट्टी की याद खींच ले जाती। शायद यही एक कारण था कि उन्हें भारत के उत्तर पूर्वी भाग में एक गायक या संगीतकार की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जाना जाता था जिसे लोग सम्मान की दृष्टि से देखा करते और अपना समझते। जुबिन उस सम्मान को सिर्फ यूं ही नहीं पा रहे थे बल्कि उन्होंने वो सम्मान कमाया था लगातार अपने उन कामों से जो वो लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से किया करते।

जुबीन अपने संगीत के साथ साथ समाज सेवा के कई कामों से भी जुड़े हुए थे। असम बाढ़ के दौरान भी उन्होंने काफी सहायता की और लोगों से भी सहायता की अपील की। उनकी संस्था कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन के साथ वो आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों की सहायता करते, जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई रहन सहन देखते। हम जुबीन के सेवा भाव का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि कोविड के दौरान उन्होंने 19 कोविड सेंटर्स को हर सुविधा प्रदान की। उन्होंने 16 बच्चों को गोद लिया और उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाई। न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों से भी उनका प्रेम कम नहीं। डॉग शेल्टर, बंदर और पक्षियों के लिए भी कई तरह की व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि उन्होंने उस दौरान अपने गुवाहाटी के घर को भी कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया। कहते हैं एक कलाकार की ईमानदारी और सच्चाई उसके काम में झलकती है। शायद यही बात जुबीन को भी लोगों से जोड़ती है।

दीना बंधु, मोन जाई, भल पाबो ना जानीलू, गाने की आने, मिशन चाइना, प्रियार प्रियो, द अंडरवर्ल्ड, कंचन जंघा, राजनीति, सिकार और रोई रोई बिनाले। इनमें से मिशन चाइना पहली ऐसी असमिया फिल्म बनी जिसने 6 करोड़ कलेक्शन किया और इसका रिकॉर्ड तोड़ा जुबीन की ही फिल्म कंचन जंघा ने 7 करोड़ का कलेक्शन करके।

बतौर अभिनेता और निर्देशक पहली फिल्म थी साल 2000 के शुरुआत में आई फिल्म तुमी मोड़ मथो मोर। कुछ अन्य फिल्में जिनमें जुबीन बतौर अभिनेता नजर आए, प्रेम अरू प्रेम।

संगीत में हमें रॉक, भारतीय शास्त्रीय संगीत और असमिया लोक गीतों का मेल नजर आता है। साथ ही एक सूफियाना अंदाज भी उनकी आवाज में झलकता रहा है। हालांकि उनका जीवन भी कुछ सूफियाना अंदाज लिए हुए ही लगता है। उनका संगीत हो या जीवन, वो स्वतंत्र रहना ही पसंद करते थे। उनका मानना था कि एक कलाकार को अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए किसी भी तरह की बंदिश में नहीं होना चाहिए। यही कारण था कि जब उनके सुपरहिट गीत या अली के बाद उन्हें उसी तरह के गीतों के ऑफर आने लगे तो उन्होंने मना कर दिया। अपनी बातें, अपने विचार सामने रखने में जुबीन कभी भी नहीं घबराते थे।

साल 2009 में जुबिन गर्ग को शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ साइलेंस के लिए गैर फिल्मी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 2022 में उनकी 20 फीट ऊंची प्रतिमा दिग्बोई में अनावृत की गई। अपने 33 साल के करियर में जुबिन ने कई गीतों को अपनी आवाज दी, लेकिन वो अक्सर कहा करते कि उनका गाया गीत मायाबिनी उनके दिल के करीब है। अपने फैंस को लगातार नाराज करते हुए वो ये तक कहा करते कि ये गीत उनकी अंतिम यात्रा में गाया जाना चाहिए, और किसे पता था कि ये दिन भी देखना ही होगा। 19 सितंबर 2025 वो तारीख थी जब लोगों को ये दिल दहलाने वाला समाचार मिला। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए सिंगापुर गए जुबिन, वहाँ समुद्र में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे और एक हादसे में 52 साल की उम्र में जुबिन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके संसार छोड़ने के विचार ने चाहने वालों को एक ऐसे शोक में डुबो दिया जिससे बाहर लाने का काम भी केवल जुबिन की आवाज ही कर सकती थी।

पार्थिव शरीर को जब भारत लाया गया तो उनकी अंतिम यात्रा में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। चाहने वालों का ये हुजूम थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 23 सितंबर तक ये दौर यूं ही चलता रहा। अपने चहेते सितारे को देखने के लिए आए लोगों की आंसू

लगातार बह रहे थे। विश्व में किसी की अंतिम यात्रा में लोगों का ऐसा जमावड़ा चौथी बार ही देखा गया और भारत में पहली बार। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज भी किया गया। गुवाहाटी में जुबीन को अलविदा कहने के लिए फैंस ने उनके ही गीतों को एक साथ गाया। इसमें जुबीन का पसंदीदा गीत मायाबिनी भी शामिल था। जुबीन का जाना असमिया संगीत के एक दौर का खत्म होना माना गया, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि एक कलाकार कभी खत्म नहीं होता। वो अपनी कला के जरिए मौजूद रहता है और कुछ न कुछ सिखाता रहता है।

0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार, अभिनेता और बहुमुखी प्रतिभा के धनी जुबीन गर्ग पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन प्रभा भटनागर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

0: दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आइची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी विविध भारती केंद्र स्टूडियो समयं 12 గంటల దాటి 5 నిమిషాలు చైతన్య స్ఫూర్తి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం అంటోంది మీ రేడియో సఖి అనుపమ. ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనాలు అంటాము గౌరవంగా. ఈ మాట తెలిసిన కొందరు స్ఫూర్తిదాతలకు, అజ్ఞాతంగా ఉంటూ సేవలనందించే ఎందరో సమాజ సేవకులకు కూడా వర్తిస్తుంది కదా. మరి ఒక సామాన్యుడు అసామాన్యమైన ఆలోచనతో రైతులకు వెన్నుగా ఎలా నిలిచారో తెలుసుకోవాలనుందా? మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు చైతన్య స్ఫూర్తిలో ఆ వ్యక్తి గురించి.

नमस्कार श्रोताओं, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। खूबसूरत गीतों का ये सफर आपकी फरमाइशें और आपके पत्र और होता है आपको बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार। तो कार्यक्रम के लिए अपने रेडियो सेट के जरा करीब आइए, पास लाइए और जरा ध्यान से सुनिए, कहीं आपके पसंदीदा गीतों में से तो कोई गीत आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का प्रोग्राम मन चाहे गीत में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

डिस्ट्रिक्ट साबरकांठा से इस गीत की फरमाइश भेजी विनोद भाई बी वाघेला ने, और इसी गीत को सुनना चाहते थे छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव। और ये पत्र आया श्रॉफ रोड राजकोट सौराष्ट्र से जुबैदा खातून, रुबीना हीना, नूर मोहम्मद लखानी, सिराज और विहान लखानी की ये फरमाइश थी। और प्रमिला गंज आलोट के हमारे श्रोता हैं रतलाम के, मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, अतुल पायल, अतुल कुमार पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने इस पत्र को भेजा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं अर्पा पैरी, पार्वती, राधा भगवान और शिव चंद्राकर। आपने सुना था दो रास्ते फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज थी।

आसपास फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और गीतकार आनंद बख्शी थे। ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं मांगीलाल चंदेल, अरविंद अशोक, राजकुमार और हिमांशु, और कालेगांव जाफराबाद की ये फरमाइश है सुधाकर राजे, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित मोताला के हमारे श्रोता हैं प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख करडा रोड से, कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरवद देशमुख की यह फरमाइश है। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्य और इसी गीत को सुनना चाहते थे। अम्बेडकर नगर अकोले के हमारे श्रोता प्रकाश खेलकर, मीराताई खेलकर, आरती संतोष खेलकर, पूजा खेलकर और इनके परिवार के सभी सदस्य श्रोताओं विविध भारती से

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी की रचना आप सुन रहे थे। बाबुलगांव महाराष्ट्र के हमारे श्रोता इस गीत को इन्होंने पसंद किया था, प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति तृप्ति, यशोदीप की ये फरमाइश है। और दूधसागर मार्ग राजकोट के साजिद कुतुबुद्दीन मकसूद शाहीन चाणक्या ने फरमाइश भेजी। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह ने इस गीत को सुनना चाहा। जिला लुधियाना के हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष बिट्टू, दीपक और इसी गीत को सुनना चाहते थे। बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार के ही हमारे श्रोता हैं डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम और दानिश अंसारी। सलीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी ने इस गीत को सुनना चाहा। और जेल रोड दिल्ली के हमारे श्रोता हैं लाल बाबू, दीवाना और दिव्या भारती।

गोला बाजार बक्सर के हमारे श्रोता मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, आयुष और सांगवी की ये फरमाइश थी। खांजीपीर उदयपुर के हमारे श्रोता डॉक्टर निदा नाहिद फरीदा, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान, मंजू निमी, थाना रोड बक्सर से इस गीत को पसंद किया। आशीष, सतीश और आयुष ने और लक्ष्मी बाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर के हमारे श्रोता हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण, गणेश और संजना परी मालती स्वाति प्रयाग चौधरी की फरमाइश है ये।

विश्वेश्वर शर्मा का लिखा है ये नगमा। आपने सुना शंकर जयकिशन की तर्ज थी, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आत्मा राम फिल्म का ये गीत था श्रोताओ। और यही है आज के मंच है गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम में सहयोग मिला योगिता जाधव और धनाश्री साठे का। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले और अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार, लेकिन भेजते रहिए अपने पत्र, क्योंकि आपके पत्रों का हमें भी रहता है कार्यक्रम के लिए इंतजार।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता, इसका पहला भाग। ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
2: जैसा मेघदूत में वर्णित है, मालवांचल के ग्राम वृद्ध वत्सराज उदयन और अवंतिराज कन्या वासव दत्ता की प्रणय गाथा के ज्ञाता थे। इसी प्रणय गाथा को महाकवि भास ने अपने दो नाटकों प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासव दत्ता में गूंथा है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में वत्सराज उदयन का अवंती सीमा पर बंदी होना, अवंतिराज महलों में रहकर उदयन का वासव दत्ता को वीणा की दीक्षा, उनका प्रणय और महाअमात्य यौगंधरायण के प्रयत्नों से उदयन की मुक्ति और उदयन द्वारा वासव दत्ता का हरण कर कौशाम्बी ले जाना वर्णित है। स्वप्न वासव दत्ता उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है, भास की विख्यात नाट्य कृति है स्वप्न वासव दत्ता।

0: आमात्य योगेंद्रायण, कैसा वन है ये? हमारे भाग्य रेखा की तरह ये घनी काली वनराजी चलते चलते थक गई हूं मैं। ये दिन भी देखना थे हमें।
1: आर्य वासव दत्ता, चिंतित न हो।
0: आर्य, कैसा है ये नियति का क्रूर चक्र? सोच कर कांप उठती हूँ। इधर आर्य पुत्र का शत्रुओं द्वारा पराभव, कौशाम्बी के राज महलों को त्याग, लावाणक ग्राम में राज परिवार का निवास,
1: और इधर महाराजा उदयन का आखेट के लिए वन गमन, उधर लावाणक ग्राम में भयानक अग्नि प्रकोप।
0: नहीं नहीं नहीं महामात्य, उसे याद न दिलाएं, सहर जाती हूँ उसे याद कर। आपने ही मुझे उन अग्नि ज्वालाओं के बीच से बचाया, आप ना होते तो क्या होता मेरा? और अब हम इस वन भूमि के बीच खड़े हैं।
1: हमें अपना करणी करना है देवी वासवदत्ता। मुझे विश्वास है एक दिन हम इन समस्त विपदाओं से अवश्य मुक्त होंगे।
0: हाँ, यही हो महामाति योगेंद्रायण।
1: यही होगा देवी, यही होगा। देवी, स्मरण है न आपको मेरी प्रतिज्ञा, जब तक हम शत्रुओं का पराभव कर अपने वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी पर पुनः अधिकार न कर ले, महाराजा उदयन को फिर सिंहासनारूढ़ न कर दे, मैं इसी तापस वेश में रहूंगा।

0: और तब तक आप भी महाराजा उदयन को नहीं दिखेंगी।
1: आर्य, आर्य पुत्र के मंगल के लिए ही आपने ये कठोर प्रतिज्ञा की है, मैं इस प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगी।
0: तो देवी, अब से मैं महाआमात्य योगेंद्रायण नहीं बल्कि एक परिव्राजक हूं, और आप वत्सराज उदयन की महारानी नहीं बल्कि मेरी प्रिय भगिनी अवंतिका है।
1: हाँ, मैं इसे याद रखूंगी।
0: देवी, वहां सामने देखिए, जहां मृग निर्भय विचर रहे हैं, चारों दिशाओं से यज्ञ धूम उठ रहा है, जहां व्यवस्थित अरण्यावली है।
1: हाँ?
0: मुझे लगता है वहां तपोवन है, क्यों न हम वहां चले।
1: हाँ आर्य, यही उचित होगा, चलिए।
2: मार्ग छोड़ दें, आर्य हट जाए, मार्ग छोड़ दें।
3: आश्चर्य, यहाँ भी लोगों को हटाया जा रहा है। पूजनीय और वलकलधारी आश्रम वासियों में ये लोग क्यों भय उत्पन्न कर रहे हैं? ये अभिमानी इस तपोवन के साथ गांव का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं?
2: मार्ग छोड़ें, ए आर्या, हट जाएं, मार्ग छोड़ दें।
1: आर्य योगेंद्रराय, ये कौन है जो आश्रम वासियों को यूं हटा रहे
2: हैं? ए आर्या, मार्ग छोड़ दें।
1: देखिए ना, यहाँ तो मुझे भी हटाया जा रहा है। आर्य, अब तो ये थकावट मुझे इतना दुखित नहीं कर रही जितना कि ये अपमान।
3: धैर्य धैर्य देवी, अपने पति वत्सराज उदयन के विजयी होने पर आप फिर प्रतिष्ठित होंगी। काल चक्र के घूमते अरों की भांति इस जगत का भाग्य भी घूमता है।
2: मार छोड़ दे आर्य, हट जाए, मार छोड़ दे।
4: संभाषण, लोगों को इस तरह ना हटाओ।
5: आश्रम वासियों के प्रति कठोर व्यवहार उचित नहीं। ये मुनिजन नगर के अपमान से बचने के लिए इस वन में निवास करते हैं।
6: जो आज्ञा आर्य कंचुकी, ऐसा ही होगा।
0: ये कंचुकी ज्ञानवान है। देवी वासुदत्ता, आइए इसके पास चले। आर्य कंचुकी
5: जी,
0: आप रनिवास की प्रतिष्ठा के ज्ञाता हैं, ज्ञानवान हैं। हमें बताएं, लोगों को यहाँ राज से क्यों हटाया जा रहा है?
5: तपस्वी, हमारे मगध राज महाराजा दर्शक की बहन राजकुमारी पद्मावती महाराजा की माता महादेवी से मिलने यहाँ आश्रम में आई है।
0: अच्छा, तो ये ही वो मगध राज कन्या पद्मावती है जिनके लिए पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने घोषणा की है कि ये हमारे स्वामी वत्सराज उदयन की द्वितीय रानी होगी। अपने स्वामी की भावी वधु को देखकर मेरे मन में ममत्व सा जागृत हो रहा है।
7: राजकुमारी, आश्रम में प्रवेश करें।
8: स्वागत है राजकुमारी।
9: स्वागत है राजकुमारी।
8: आर्य तपस्विनी, हमारा अभिवादन स्वीकारें।
9: आयुष्मान हूँ, ये आश्रम अतिथियों के लिए उनके गृह समान ही है।
8: इन वचनों के लिए अनुग्रहित हूँ आर्य। बहुत सुंदर आश्रम है ये, कैसी शांति, कैसा सुख है यहाँ।
7: इधर इधर पधारिए राजकुमारी, इधर आइए।
8: हाँ?
9: कितनी सुंदर है राजकुमारी पद्मावती। मगध राज की सुंदर भगिनी के लिए किसी राजकुल ने विवाह प्रस्ताव तो किया ही होगा।
7: उज्जैनी अधिपति महाराजा प्रद्योत महासेन ने अपने राजकुमार की ओर से दूत भेजा है।
1: उज्जैनी से मेरे पिता अवंती नरेश ने दूत भेजा है। ओह, कितना अच्छा। तब तो पद्मावती मेरी आत्मिया हुई।
8: आर्य, क्या आश्रम में ऐसे मुनिजन हैं जो मेरी दी भेंट स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित

0: करें? आर्य कंचुकी,
1: राजकुमारी की जो इच्छा।
2: आश्रम के तापसजन सुने, मगध राज कन्या पद्मावती आपको धर्मार्थ भेंट लेने आमंत्रित करती हैं। जिसे जो वस्तु इच्छित हो बताएं।
3: आर्य कंचुकी, मुझे कुछ मांगना है।
0: अवश्य मांगे, मेरा तपोवन में आना सार्थक रहा।
4: इस आश्रम के तपस्वी हर तरह संतुष्ट हैं। ये मांगने वाला निश्चय ही कोई आगंतुक है।
1: बताएं, बताएं तपस्वी, आपकी इच्छा बताएं।
3: राजकुमारी, ये मेरी बहन अवंतिका है। इनके पति विदेश में हैं। मेरी इच्छा है कुछ समय इन्हें आप अपने साथ रखें, आप इनका परिपालन करें। देवी, मैंने धन वस्त्र की इच्छा से ये काषाय वस्त्र धारण नहीं किए हैं।
0: फिर क्या चाहते हैं आप?
3: आपने धर्म प्रियता का परिचय दिया, अतः आप निश्चित ही मेरी भगिनी की चरित्र रक्षा कर सकती हैं।
1: चरित्र रक्षा? चरित्र रक्षा? राजकुमारी, इनका मनोरथ बड़ा है, धन प्राण और यहाँ तक के तप भी सुखपूर्वक दिए जा सकते हैं, लेकिन थाती की रक्षा?
0: आर्य कंचुकी, घोषणा के बाद पुनः विचार उचित नहीं। अब ये जो कुछ कहें वही संपन्न हो।
1: जो आ गया राजकुमारी जी।
3: अनुग्रहित हुआ मगध राजकुमारी पद्मावती, जाओ अवंती के देवी के समीप जाओ।
0: आह, कैसा सुंदर मुख है इसका। चेटी, अवंतिका को देख ही लगता है जैसे ये कोई राजकन्या हो।
5: आर्य, लगता मुझे भी यही है, इन्होंने निश्चित अच्छे दिन देखे हैं।
0: आओ अवंती के, हमारे साथ चलो।
3: एक भार उतरा, जैसा साथी मंत्रियों के साथ निश्चित किया था ये वैसा ही संपन्न हुआ। जब मेरे स्वामी वत्सराज उदयन कौशाम्बी को जीत कर सिंहासनारूढ़ हो गए, तब उन्हें देवी वासवदत्ता को वापस लौटा दूंगा। उस समय यही मगध राजकुमारी मेरा साक्ष्य करेंगी, और ऐसी भविष्यवाणी भी है, समुचित रीति से कहे ऋषि वचनों को भाग्य भी मिथ्या नहीं करता।
6: बहुत थक गया हूं, मध्याह्न हो रहा है, पर विश्राम कहां करूं? कहां जाऊं? किधर जाऊं? अरे, ये सामने शायद तपोवन है। हाँ, तपोवन ही है। निर्भय हिरण और गायों के दल घूम रहे हैं, फल फूलों से लदे वृक्ष, प्रति दिशा उठता यज्ञ धूम। निश्चित ही तपोवन ही है। चलो देखूं।
2: ब्रह्मचारिन, पधारें।
1: आश्रम सबका समान रूप से होता है, हम आपसे पहले यहाँ आए, आप हमारा आतिथ्य स्वीकारें। श्रीमान, लीजिए, शीतल जल ग्रहण करें।
6: धन्यवाद। अब थकान दूर हुई।
1: अतिथि ब्रह्मचारी, ये हैं हमारी मगध राजकन्या पद्मावती।
0: प्रणाम।
6: आयुष्मान भव।
1: ये हैं इन तपस्वी की बहन अवंतिका।
0: प्रणाम।
1: और ये इनके भाई।
3: प्रणाम मुनिवर।
1: और ये आश्रम की तपस्विनी सेविका चेटी।
0: प्रणाम मुनिवर।
6: आयुष्मान भव।
3: ब्रह्मचारी, आप कहां से आए, कहां जाएंगे, निवास स्थान कहां है आपका?
6: मैं मगध की राजधानी राजगृह का ही रहने वाला हूं। वेदों के विशेष अध्ययन के लिए वत्स देश के लावणक ग्राम में रहता था।
0: लावणक ग्राम में?
3: अध्ययन समाप्त हुआ?
6: नहीं तपस्विन, नहीं।
3: नहीं? फिर वहां से चले आने का प्रयोजन?
6: वहां एक दुखद घटना घटी।
3: वो क्या?
6: वही लावण ग्राम में उदयन नाथ

0: के राजा रहते थे।
1: स्वामी,
0: अवंती राज प्रद्युत महासेन की कन्या उनकी परम प्रिय पत्नी थी।
1: मेरे स्वामी,
0: जब राजा अन्यत्र आखेट खेलने गए तब तब तब गांव में आग लगी। और इसके बाद रानी की रक्षा का प्रयत्न करते अमात्य योगंधरायण भी उसी अग्नि में गिर पड़े।
1: क्या
2: अमात्य भी गिर पड़े? फिर मुनिवर?
0: फिर उदयन लौटे और ये संवाद सुना। प्रिय वियोग से दुखी हो वे उसी अग्नि में प्राण त्यागने को उद्यत हुए। मंत्रियों ने बड़े प्रयत्नों से उन्हें रोका।
1: अपने प्रति आर्य पुत्र का असीम प्रेम जानती हूँ, उसी के बल आज जीवित हूँ। आज भी उनके प्रेम वीणा के स्वर, प्रेम वीणा के स्वर मेरे कानों में गूंजते हैं।

0: फिर महाराज उदय रानी वासवदत्ता के जलने से शेष रहे आभूषणों को हृदय से लगा मूर्छित हो गए।
1: राजकुमारी पद्मावती आर्या अवंती का विलाप कर रही है।
2: क्या बात है अवंती की?
3: ना रो अवंती के। राजकुमारी मेरी ये भगनी स्वभाव से भावुक है। हाँ ब्रह्मचारी फिर क्या हुआ?
0: फिर धीरे धीरे राजा को चैतन्य लाभ हुआ।
1: प्रसन्नता है, वत्सराज जीवित है, उनका मूर्छित होना सुन मेरा तो हृदय शून्य हो गया था।
0: लेकिन चेतना आने पर महाराज उदय सहसा उठे और हाँ वासवदत्त
4: अवंती राजपुत्र, हाँ प्रिय,
0: हाँ शिष्य,
4: वासवदत्ता, हाँ वासवदत्ता।

0: देर तक विलाप करते रहे। धन्य है वो स्त्री जिससे उसका पति इस तरह प्रेम करता है। ऐसा पति स्नेह पा वो जलकर भी नहीं जली।
1: ब्रह्मचारी, उन मंत्रियों में से किसी ने भी वत्सराज को प्रकृतिस्थ करने का यत्न नहीं किया?
0: किया तपस्वी, किया। रुम्णवान नामक मंत्री ने दृढ़ प्रयत्न किया। वे ही दिन रात राजा की यत्न पूर्वक सेवा करते रहे।
2: सौभाग्यवश आर्यपुत्र अप्रत्याशित कार्यों में दक्ष रुम्णवान जैसे मंत्री के हाथों सुरक्षित हैं। भाग्य मेरे।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, क्या राजा पूरी तरह स्वस्थ हैं?
0: इस समय तो नहीं जानता तपस्वी, लेकिन यहाँ मैं वासवदत्ता के साथ फंसा।
3: यहाँ मैं वासवदत्ता के साथ फंसा। यहाँ उससे बातें की, यहाँ रात व्यतीत की, यहाँ कोप किया। हाँ वासवदत्ता, हाँ प्रिय, हाँ शिष्य, तुम मुझे छोड़ क्यों चली गई?
0: इस तरह विलाप करते राजा को मंत्रीगण बड़े यत्न से संभाल पाए और बाहर ले जा सके।
1: फिर
0: जिस तरह चांद तारों के अस्त होने पर आकाश श्रीहीन हो जाता है, उसी तरह

0: अनाकर्षक लावण ग्राम को मैंने त्याग दिया और अब आपके समक्ष हूँ।
1: जिसकी प्रशंसा आगंतुक करते हैं वो राजा निश्चित गुणवान है।
2: क्या महाराज उदयन अब किसी अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को? हाँ, चीटी की तरह मेरा मन भी यही प्रश्न करता है।
0: अब सभी लोगों से मैं आज्ञा लूं। आश्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मेरा आशीष।
1: प्रणाम मुनिवर।
3: अच्छा ब्रह्मचारी, प्रणाम। अब मैं भी देवी पद्मावती से जाने की अनुमति चाहूंगा।
1: आर्य, आपके बिना आपकी ये भगिनी दुखी तो नहीं होंगी?
3: नहीं राजकुमारी, साधु जनों के हाथ हो ये दुखी नहीं होगी। अच्छा, मुझे आज्ञा दे, मैं जा रहा हूं अवंती के।
4: राजकुमारी, आश्रम प्रवेश का समय हो गया। इधर इधर पधारे राजकुमारी।
5: सांध्य बेला हो रही है, पंछी बसेरा ले रहे हैं, मुनिजन जल तर्पण कर रहे हैं, सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा है।
4: सब लोग आश्रम प्रवेश करें।
1: चलो कंचुकी, चेटी चलो।

0: ये रही तुम्हारी गेंद।
1: अवंती के अब बस करो, अब नहीं खेल सकूंगी।
0: खेले राजकुमारी, कुमारी का जीवन के रमणीय क्षणों का सदुपयोग करे। सुना क्या कह रही है चिट्ठी?
1: सुन रही हूँ अवंती के। पर बताओ हमारे यहाँ की राजगृह के राजमहल में कैसा लग रहा है तुम्हें?
0: ये राजगृह के महल भी सुंदर हैं और इस उद्यान की सुंदरता तो बस।
1: क्या देख रही हो इस तरह मेरी ओर अपलक?
0: आज आप विशेष सुंदर लग रही हैं राजकुमारी।
1: रहने दो, तुम उपहास कर रही हो मेरा।
0: अच्छा अच्छा महासेन की भावी पुत्र वधू, मैं चुप होती हूँ।
1: ये महासेन कौन है?
0: नहीं जानती? उज्जैनी के राजा प्रद्योत। असीम सेना होने के कारण उनका नाम ही महासेन हो गया।
1: लेकिन हमारी राजकुमारी उज्जैनी का ये संबंध नहीं चाहती।
0: तब किसके साथ चाहती हैं आर्य चेठी?
1: ये चाहती हैं वत्सराज उदयन को।
0: वत्सराज?
1: कुमारी पद्मावती उनके गुणों पर मुक्त है।
0: मेरे स्वामी, ये आर्य पुत्र की पति रूप में कामना करती है। नहीं नहीं,
1: क्या क्या हो देवी?
0: हाँ कुछ नहीं, मैं कह रही थी वत्सराज के साथ ही क्यों।
1: वत्सराज उदयन अत्यंत कोमल हृदय हैं।
0: जानती हूँ, मैं भी कभी उनके इस गुण पर इसी तरह आसक्त हो गई थी। उनका रूप गुण।
1: अच्छा राजकुमारी पद्मावती, यदि वत्सराज उदयन कुरूप हुए तो?
0: नहीं, वे अत्यंत सुंदर हैं, दर्शनीय हैं।
1: अवंती की, तुम उन्हें कैसे जानती हो?
0: मैं नहीं नहीं, ऐसा ही उज्जैनी के लोग कहते हैं।
1: ओह वे अपनी ससुराल उज्जैनी के लिए तो अपरिचित नहीं?
2: कुमारी पद्मावती की जय हो। कुमारी आपकी मंगनी हो गई।
0: मंगनी हो गई?
2: बधाई हो राजकुमारी।
0: आहो धात्री माँ, किसके साथ मंगनी हो गई राजकुमारी की?
1: वत्सराज उदयन के साथ।
0: क्या, वत्सराज के साथ? कहाँ, कैसे? वे कुशल पूर्वक तो हैं?
1: हाँ वे कुशल पूर्वक है अवंती के। वे यहाँ राजगृह आए हैं और राजकुमारी पद्मावती को उन्होंने स्वीकार किया है।
0: क्या क्या स्वयं उन्होंने ये विवाह प्रस्ताव किया?
1: नहीं, वे अन्य

0: प्रयोजन से यहाँ आई थी। हमारी महाराज मगध नरेश ने उनकी आभिजात्य, ज्ञान, वय और रूप को देख यह प्रस्ताव किया है।
1: ऐसा ही है ना? तो तुम्हारी पुत्र इसमें सर्वथा निर्दोष है। हाँ, मेरा मन भी यही कहता है।
0: ओ राजकुमारी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो।

0: राजकुमारी पद्मावती को विवाह मंडप में छोड़, मैं यहाँ राजगृह के प्रमथ वन में चली आई ताकि दुख से मुक्त हो मन बहला सकूं। मेरे दुख की भी कोई सीमा है आर्यपुत्र, वे भी अब पराए हो गए। धन्य है चक्रवाकी जो अपने चक्रवाक से बिछुड़ फिर जीवित नहीं रहती। मैं अभागिन आर्य पुत्र को देख भर लेने की मनोरथ से ही।
1: आर्य अवंतिका, आर्य अवंतिका जाने कहां गई? ओ, प्रियंगुलता के नीचे शिला पट पर बैठी है। अरे कितनी देर से मैं आपको ढूंढ रही हूँ।
0: किस लिए चेटी?
1: राजमाता का कहना है आप महाकुल से उत्पन्न हैं, स्नेहशील और चतुर हैं, इसलिए आप ही राजकुमारी पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथे। ये लीजिए, लीजिए फूलों की टोकनी।
0: हाय, मुझे ये करना होगा, भाग्य भी कितना निष्ठुर है।
1: अरे क्या सोच रही हैं? जा माता उदयन मणिभूमि में स्नान कर रहे हैं, आप शीघ्र माला गूंथे।
0: ठहरो चेटी। अच्छा ये तो बताओ, तुमने जामाता को देखा है? कैसे हैं?
1: ऐसे हैं जैसे मैंने कभी नहीं देखा।
0: कहना क्या सुंदर हैं?
1: धनुष वाण रहित साक्षात रतिपति कामदेव हैं।
0: अच्छा अब बस भी करो।
1: अरे क्यों रोक रही है मुझे?
0: पर पुरुष की प्रशंसा सुनना अनुचित है ना।
1: अच्छा अच्छा शीघ्र माला गूंथ दे।
0: वही तो कर रही हूँ।
2: अच्छा चेटी बताओ इस फूल का क्या नाम है?
3: अविधवाकरण।
2: अविधवाकरण? जानती है इसके धारण करने से पत्नी विधवा नहीं होती।
0: तो फिर माला में इससे अधिक गूंथूंगी, अपने लिए और पद्मावती के लिए भी।
2: और इसे क्या कहते हैं?
3: सपत्नी मर्दन, यानी सौत को डहाने वाली।
0: नहीं नहीं इसे नहीं गूंथना है।
3: क्यों
0: चेटी? राजा की पूर्व पत्नी वासव दत्ता का तो देहांत हो चुका है, अब इसे गूंथने का क्या प्रयोजन?
4: जल्दी करें आर्ये, जल्दी करें, सुहागिने जामाता को विवाह मंडप में ले जा रही हैं।
1: हाँ हाँ लो ये माला तैयार है।
3: अरे सुंदर माला गूंथी है आपने, तो मैं चली।
0: ये भी कैसा दुर्भाग्य, आर्यपुत्र भी अब मेरे देर पर आए हो गए।

स्वप्न वासव दत्ता। अभी आपने इस नाटक का पहला भाग सुना। ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ, उन्होंने बाद में अपना नाम बदल लिया और रखा पूर्णिमा। पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
3: आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी कलाकार को आमंत्रित किया है जिन्हें आप उनके बचपन से सुनते आए हैं और आज भी जब आप उनके गाए गीत सुनते हैं तो आपके और हमारे पैर थिरकने लग जाते हैं। जी हाँ, आज बॉम्बे टॉकीज में हमारी मेहमान है मधुर और दमदार आवाज की धनी गायिका पूर्णिमा। जी हाँ, वही पूर्णिमा जिन्हें बचपन में हम सुषमा श्रेष्ठ के नाम से जानते हैं। तो विविध भारती के स्टूडियो में पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार आप सबको और मेरे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
3: जी, हर आकाशवाणी से पूर्णिमा के गायक गीत न जाने कितने बजते रहे और आज आपको सामने पाकर मुझे लगता है हम धन्य हो गए हैं।
4: धन्य तो मैं हो गई, आप लोगों ने जिस तरह से मेरा इस्तकबाल किया
3: जी,
4: जो प्यार जो मान मुझे आप लोगों ने दिया
3: जी,
4: बहुत कम मिलता है। आजकल तो मिलता ही नहीं
3: जी,
4: पर मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह से आप मुझे वेलकम करेंगे
3: जी।
4: तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्य हो गई आज।
3: ये आपका बड़प्पन है,
4: मतलब अगर मैं नहीं आती ना तो मुझे दुख होता। मतलब मुझे शायद इस बात का एहसास भी नहीं होता
3: जी
4: कि मेरे ना आने से मैं क्या क्या खो रही हूँ
3: जी। जी,
4: तो मैं आई इसके लिए मैं खुद की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
3: तो पूर्णिमा जी, आज का जो ये सफर है जो आपके साथ हम तय करने वाले हैं, ये सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का सफर है
4: जी, जी।
3: वहाँ तक हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से एक प्यारी सी नन्ही सी गायिका किस तरह से एक बड़ी गायिका में तब्दील हो गई और वहाँ पर भी वो हमेशा टॉप पे रही और अपने गानों से हम लोगों को हमेशा बांधे रखा। तो पूर्णिमा जी, आप नेपाली हैं और आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक बहुत जाने माने संगीतकार रहे हैं, तो मुंबई आना कैसे हुआ? क्योंकि आपके पिता मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के संगीत निर्देशकों के साथ काम करते थे।
4: जी जी, एक्चुअली हुआ यूं कि डैडी का जो परिवार था नेपाल से, वो लोग कोलकाता चले गए।
3: अच्छा।
4: और कोलकाता में जाकर बस गए। तो डैडी का जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ।
3: अच्छा।
4: और पढ़ाई लिखाई संगीत की तालीम सब कुछ डैडी ने वहीं से हासिल की, कोलकाता से
3: जी।
4: फिर मुझे लगता है अगर मुझे ठीक से याद है तो लेट 40s में डैडी मुंबई आ गए। आए किसके साथ? मन्नादा के साथ, मन्नादा जी के साथ।
3: अच्छा।
4: आए मन्नाडे जी के साथ
3: जी।
4: और उनके चाचा हुआ करते थे केसी डे जी। उन दोनों के साथ डैडी मुंबई आए। फिर मुंबई में स्ट्रगल शुरू हुआ, तो डैडी ने पहले तो एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे बुलो सिरानी जी,
3: जी
4: उनको असिस्ट किया।
3: उनके गाने हम यहाँ के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में
4: है
3: जाते हैं।
4: हाँ।
3: जी।
4: तो उसके बाद उनको असिस्ट करते करते फिर डैडी ने रंजीत स्टूडियो ज्वाइन किया, तो वहाँ पे डैडी फिर खेमचंद प्रकाश जी को असिस्ट करने लगे।
3: अरे क्या बात।
4: मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि फिल्म महल की गाने जब बन रहे थे तो खेमचंद जी तब तक काफी बीमार हो चुके थे, काफी बीमार रहते थे। तो वो गाना खास तौर पर आएगा आने वाला, उसको कंपोज करने में डैडी का बहुत सहयोग रहा है।
3: अच्छा।
4: बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डैडी की रही है
3: जी जी।
4: बस फिर डैडी ने बहुत अपनी खुद से भी कोशिश की, कुछ इंडिविजुअल फिल्म्स में भी उन्होंने ये बस्ती ये लोग वगैरह। लेकिन यहाँ क्या होता है ना मंदाकिनी जी की, सिर्फ आज मुझे

0: आपका जो गायन का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आप हिंदी फिल्मों की पहली सफल बाल गायिका रही हैं। महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी गायकी शुरू कर दी थी
1: जी।
0: ये सफर कैसे शुरू हुआ?
1: असल में मैंने शुरुआत तो की बहुत बचपन में।
0: अच्छा, क्योंकि इससे पहले?
1: जी जी, क्योंकि देखिए संगीत में एक मुझे वातावरण घर में मिला
0: जी,
1: विरासत में ही संगीत मिल गया तो, और मेरे मायके की तरफ की मतलब मेरी माँ, मेरी मौसियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। माँ तो खैर अभी जिंदा नहीं है
0: जी,
1: आई कहती थी मैं माँ को
0: जी,
1: आई जिंदा नहीं, मेरी एक दो मौसियों की भी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो थी और जो भी अभी मौसी जिंदा है, बहुत सुंदर गला। तो हो सकता है आवाज मुझे शायद विरासत में उस तरफ से मिली हो। और क्या मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं?
0: जी बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या, क्योंकि डैडी असिस्ट करते थे खेमचंद प्रकाश जी को, भूलो सिरानी जी को, तो घर में काफी प्रख्यात लोगों का आना जाना, एक जैसे ना रोजाना ही वो चलता रहता,
0: बड़े बड़े संगीतकार,
1: है ना,
0: संगीतकारों का
1: और सिंगर्स भी, गायक गायिकाएं, उनमें से बहुत करीब जो थी डैडी के और आई के वो थी आशा जी।
0: अच्छा।
1: मैं आज भी उन्हें आशा काकी ही कहती हूँ, है ना। तो आशा काकी का आना जाना, तो आई मेरी जो थी वो आशा काकी की जबरदस्त फैन, मतलब कहते हैं ना एक दीवानों सा एक प्यार उनकी गायकी से, उनसे एक पर्सनालिटी जो उनकी थी
0: जी,
1: उस पर्सनालिटी से आई इतना प्यार करती थी कि मैं जब आई मुझे लेकर जब गर्भवती हुई तो आई हमेशा ये कहती थी, ये प्रार्थना करती थी
0: जी
1: कि मुझे बेटी हो, और वो आशा जैसी
0: जैसी हो। अरे क्या बात है,
1: ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है शायद इसीलिए मेरे गानों में उनकी छवि आपको थोड़ी बहुत,
0: बिल्कुल,
1: थोड़ी
0: बिल्कुल,
1: बहुत
0: और
1: नजर,
0: आप उससे प्रभावित भी रही हैं।
1: बिल्कुल, एक बाल बराबर उनकी छवि शायद नजर आती होगी।
0: नहीं, होता है कलाकार है के साथ, जब हम अपना किसी को आइडियल मानते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं वो छवि हमारे अंदर होती है।
1: और आइडल तो आई मानती थी, उसके बाद मैं तो वो डबल हो गया।
0: आप ही का गाया हुआ सुनते
1: जी, जी बिल्कुल
0: पसंद का गीत सुनते हैं।

0: जब मैं 6-7 महीने की थी, आई ने बताया सब कुछ। एक गाना बहुत चला था सुमन कल्याणपुर जी का, वो छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, सांवरे छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, ठीक से याद नहीं मुझे।
1: बहुत सुंदर।
0: तो मैं बैठने लगी थी और ये आशा काकी जब घर में आती थी तो ये गाना वो गुनगुनाती थी कि वो सिर्फ मुझे ठुमके लगाते हुए देखना चाहती थी।
1: अच्छा।
0: तो मैं बैठे बैठे ठुमके लगाती थी और इतना हंसती थी वो, इतना एंजॉय करती थी। उन्होंने वो हमेशा कहती थी, भैया इसे ना आप डांस सिखाइए, ये बहुत अच्छी डांसर बनेगी। और मंदाकिनी जी, मैं बचपन में डांस बहुत अच्छा करती थी
1: जी।
0: ये अलग बात है कि आज मैं लोगों को नचाती हूँ लेकिन तब मैं

0: थी, बहुत अच्छा थी
1: जी।
0: तो मतलब ऐसा था कि अब थोड़ा और मैं जब बड़ी हो गई तो जो गाने आते थे, अब घर में जब कोई फंक्शन है कुछ भी, दशहरा दिवाली सब मिलते थे, क्योंकि आई सबसे बड़ी थी, डैडी सबसे बड़े थे, तो हमारे घर में ही वो हुजूम लगता था। तो बस तो एंटरटेनर एक ही थी, मुझे घर में सब गुड्डी कहते हैं, तो एक ही थी एंटरटेनर गुड्डी
1: जी।
0: तो पहले तो ये कि डांस तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके,
1: हाँ,
0: फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं क्या 5-6 साल की थी
1: जी,
0: और सारा म्यूजिक अपने मैं जुबानी मुझे याद रहता था। तो वो जो गाना चला था ना, उड़ के पवन के संग चलूंगी, तो उसका बिगनिंग म्यूजिक टररप पररप पररप पररप पररप पररप पप पप।

0: कहते हैं, तो एक ही थी एंटरटेनर गुड्डी
1: जी।
0: तो पहले तो ये कि डांस डांस तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके,
1: हाँ,
0: फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं क्या 5-6 साल की थी
1: जी,
0: और सारा म्यूजिक अपने मैं जुबानी मुझे याद रहता था। तो वो जो गाना चला था ना, उड़ के पवन के संग चलूंगी, तो उसका बिगनिंग म्यूजिक वो सब मुंह से बजा के फिर मैं एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: तो बहुत मजे लेते थे सब लोग और यही लगा था सबको कि ये डांसर बनेगी। लेकिन अभी हुआ यूं कि करते करते जब 7 साल की हो गई, गाती भी थी, तो एक मेरे मामा जी कृष्ण कुमार राणा जी उनका नाम था, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे
1: जी,
0: तो वो और मेरी सबसे छोटी मौसी रेखा राणा उनका नाम है, वो अभी जिंदा है, भोपाल में है
1: जी।
0: तो वो दोनों इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मैं गाती भी हूँ। थोड़ा बहुत घर में मतलब ऐसे गवा देते थे, लेकिन उनको बहुत बहुत पता नहीं, मुझ पे बहुत एतबार था कि ये डांस से ज्यादा गाना अच्छा गाती है। तो मामा जी मेरे मुंबई में लायंस क्लब के मेंबर हुआ करते थे और एक शो था मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में। हाँ, मैं तारीख भी आपको बता सकती हूँ, 17 जनवरी 1967
1: जी।
0: तो ये शो अब मामा जी को ही ऑर्गेनाइज करना था, तो ये तय हुआ कि भाई तुम एक जो तुम्हारे एक दो डांसेस है वो करोगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे शो की तारीख करीब आती गई, तो मामा जी और मौसी ने मुझे बोला कि देखो डांस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गाना, उस वक्त की बात मैं कर 1967, हाँ,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतनी छोटी उम्र में गाना गाना बहुत बड़ी बात होगी, तो तुम ना गाना गाओ, बाद में डांस भी रखेंगे
1: जी,
0: पर तुम गाना गाओ।
1: अरे वाह,
0: तो ये बहुत नयापन होगा ऑडियंस के लिए। और मैं भी मान गई, उस वक्त ना बच्चे मान लिया करते थे,
1: बिल्कुल,
0: ना ज्यादा हुज्जड़बाजी नहीं करते
1: जी,
0: थे।
1: और आपको बनना था एक महान गायिका,
0: हो
1: तो
0: सकता है, तो कुदरत ने शायद हो सकता है कि दिमाग की बत्ती भी उसी तरह खोल दी।
1: बिल्कुल।
0: अब वो दिन आया तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, मुझे ना उस ऑर्केस्ट्रा का नाम याद नहीं, बाद में जहां गाने लगी उसका नाम था रॉयल म्यूजिक सर्कल, तो वहां उनके साथ रिहर्सल्स हुई और मैं गई गाने। पहला गाना मैंने जब गाया वो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, तो वो पहला आलाप जो लिया ना मैंने, ओ माँ, वहीं पे लोग उठकर खड़े हो।
1: अरे वाह, अरे वाह,
0: और इतनी तालियां कि उसके बाद गाना उठाने के लिए मुझे 5-7 मिनट रुकना पड़ा।
1: अच्छा।
0: अब ऐसा हुआ कि दो ही गाने रिहर्स हुए थे, अब मामा जी को भी क्या ही पता कि भाई ऐसा रिस्पांस मिलेगा
1: जी,
0: अब लोग ना छोड़े कि नहीं एक और एक और। और पता है मंदाकिनी जी, वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरहा के होत चिकने पात, तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना मंदाकिनी जी, वो पहले से, ये मेरा मानना है
1: जी, बिल्कुल सही कह रही
0: है ना, वो उस बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में
1: ढाल देती है,
0: ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी देता है।
1: बिल्कुल सही
0: है ना
1: जी, जी।
0: तो मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई, जैसे घर में गाती थी, जिस गाने की जो लाइन मुझे याद है, दो लाइंस, चार लाइंस, छोड़े ही ना पब्लिक। फिर हुआ कि भाई और भी लोग हैं कलाकार और भी परफॉर्मेंसेज हैं, तो फिर बस उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं मंदाकिनी जी, बस वहां से मैं 7 साल की थी तब
1: जी,
0: और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया
1: जी, जी।
0: कि डांस तो रहने ही दो तुम,
1: बिल्कुल,
0: तुम गाना ही गाओ,
1: आप लोगों को नचाएंगी, ये था। खुद नहीं नाचेंगी लेकिन दुनिया को नचाएंगी, और आपने नचाया भी। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये

0: आपका पहला गीत जो है फिल्म अंदाज के लिए आपने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत था
1: बिल्कुल,
0: और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ आपने गाया, इतने बड़े बड़े लोग और आप एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, ये अनुभव कैसा रहा और ये गीत कैसे मिला आपको?
1: ये शो मैंने जो किया ना मंदाकिनी जी, तो मेरे परिवार के तो सारे सदस्य आए थे, तो हमारे एक बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे चंद्रकांत भोसले जी
0: जी,
1: और वो मेरे नैनीहाल के, मतलब जहां मेरी नानी रहती थी, समझिए कि उनके बिल्कुल चाली में रहती थी नानी, नाना चौक हरिनिवास चाल, बड़ी बड़ी बड़ी चौल, वहां समझिए नेक्स्ट

0: नेक्स्ट रूम उनका, तो वो भी जानते थे, बचपन से उन्होंने देखा है, वो आए थे शो देखने। और उस वक्त देखिए, अब ये तो मैं जो कहती हूँ ना, किस्मत, सही वक्त
1: जी,
0: उसी टाइम में ये फिल्म बनने जा रही थी अंदाज, और शंकर जी, जय किशन जी नहीं,
1: अच्छा,
0: शंकर जी ने ये गाना कंपोज किया था। तब तक शायद वो अलग हो चुके थे,
1: अच्छा,
0: छोटा मुंह बड़ी बात, पर वो अलग हो चुके थे। तो शंकर जी ने अपने सारे, उस वक्त क्या होता था मंदाकिनी जी, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तक मैंने पंचम दा के साथ भी काम किया, कुछ कुछ एक हद तक आनंद मिलिंद जी के साथ भी, हम सिटिंग्स करते थे, सिटिंग मतलब रिहर्सल, गाने पहले हमें सिखाए जाते थे। तो उस वक्त जो मैं कहूंगी म्यूजिशियंस हमारे साथ बजाते थे सिटिंग में, रिहर्सल्स में, उन्हें सिटिंग मेंबर्स कहा जाता था। तो जब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स को ये बोला कि ये गाने का एक सिचुएशन आया है, अब उस वक्त तो सीनियर सिंगर्स गाया करते थे, है ना, बच्चों के गाने भी, सिर्फ एक बच्ची ने तब तक गाया था, रानू दीदी ने, हेमंत काका की जो सुपुत्री हैं, रानू मुखर्जी, उन्होंने वो गाना गाया था, नानी तेरी मोरनी को,
1: मोरली, है ना जी जी।
0: पर पता नहीं क्यों उसके बाद उनके कुछ गाने नहीं आए, तो उसके बाद बस मैं ही आई। तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर नजर में है तो मुझे बताना जरूर। उन्होंने ना ये चैलेंज दिया था सबको कि ये गाना जो है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा। अब सब लोग तो डरे हुए थे कि ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा कहाँ। सिप्पी साहब, जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस, रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर, कितने लोगों की वो पहली फिल्म रही मंदाकिनी जी, सलीम जावेद जी पहली फिल्म,
1: अच्छा,
0: बतौर स्क्रिप्ट राइटर,
1: जी बिल्कुल,
0: गुलजार अंकल के तो डायलॉग्स, और रमेश सिप्पी जी बतौर एक डायरेक्टर, तो वो रिस्क कैसे लेंगे ना,
1: और सुपर डुपर हिट,
0: सुपर डुपर हिट, वो रिस्क कैसे लेंगे। तो वो तो बिल्कुल नाराज थे इस उनके इस फैसले से, पर शंकर जी बहुत जिद्दी थे, वो माने ही नहीं, बोले मुझ पर छोड़ दो, मैं गवाऊंगा बच्चों को
1: जी।
0: तो ये भोसले जी ने, भोसले अंकल ने शंकर जी को बोला कि एक बच्ची है भोला जी की बेटी, बहुत अच्छा गाती। अब जाहिर बात है मंदाकिनी जी, वो बड़े पेड़ के नीचे तो छाया ही मिलती है ना,
1: पारिवारिक जो संगीत की पृष्ठभूमि थी वो आपके गायन कौशल को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने।
0: तो डैडी का नाम सुनते ही बोले भोला जी की बेटी है, तो लेके आओ, पूछते क्या हो। अब मुझे लेके गए मौसी और मामा उनके सिटिंग रूम पे, सिटिंग रूम हुआ करता था फेमस महालक्ष्मी
1: जी,
0: टॉप फ्लोर पे। तो जब मैं वहां गई, देखा इतना बड़ा हॉल उनका, और सारे म्यूजिशियंस बैठे थे, शंकर जी, ऐसे एक स्टेज जैसा बना था, शंकर जी वहां थे, हसरत जयपुरी जी थे, और सेबेस्टियन अंकल उनके अरेंजर थे, जिन्होंने मेरे डैडी के भी कुछ गाने अरेंज किए
1: जी।
0: तो वहां गई मैं, शंकर जी ने बिठाया और पूछा, गाती हो तुम, सीखती हो? तब तक डैडी से सीखने लगी थी थोड़ा बहुत। तो बोली हाँ। मैंने कहा अच्छा, तो क्या क्या गाती हो? मैंने सारे गम, अच्छा अच्छा किस सुर से गाती हो? मैंने कहा काली एक। अच्छा, तो जरा सुनाओ सारे गम सुनाओ। तो उन्होंने सारे गम पंचम तक लेके गए। बोले बस, बोले भोसले किसको लेके आए तुम? अरे ये तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी।
1: अरे
0: और बोले मौसी और मामा को, बोले इसको ना कल आप फिल्म सेंटर लेकर आइए
1: जी,
0: साहब के साथ और सुमन जी के साथ गाना है। तो मौसी ने पूछा रिहर्सल? अरे कोई रिहर्सल नहीं, वहीं सिखा देंगे गाना।
1: अरे वाह।
0: तो दूसरे दिन, वो तारीख थी 7 नवंबर 1969
1: जी जी,
0: फिल्म सेंटर में हमारी बारात गई, मेरे साथ एक और बच्ची भी उसने भी गाया है, प्रतिभा बोर्डेकर, वो भी भोसले काका की ही कोई जान पहचान की थी।
1: पर आगे उन्होंने फिर ज्यादा नहीं गाया,
0: उनको ना इंटरेस्ट, प्रतिभा को ना ज्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, जहां तक मैं मुझे याद है, ज्यादा गाने में उसको रुचि नहीं थी।

0: वो एक ही गाना उसने गाया। बस वहां पहुंचे मंदाकिनी जी, उन्होंने गाना सिखाया
1: जी
0: और मुझे बोला तुम हंसती हो। मैंने बोला हाँ, गाने में हंसोगी, मुझे तुम्हारी हंसी डालनी है।
1: बहुत सुंदर हंसी थी आपकी वो।
0: मैंने बोला हाँ, तो मुझे बताओ कैसे हंसोगी। तो मैंने कहा पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं। बोले बस इसको पकड़ के रखना।
1: बहुत सुंदर।
0: बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में रफी साहब आए, बहुत बाद में, मैं उनको साहब अंकल कहती थी। हाँ, और सुमन जी आए
1: जी,
0: सब आए थे
1: जी,
0: रमेश सिप्पी जी सब आए। मुझे हमको ना बाहर खड़ा किया था, वह सिंगर्स कैबिन नया नया बना था फिल्म सेंटर में। तो शंकर जी ने कहा कि अगर बच्चों को अंदर खड़ा करेंगे तो हो सकता है हेडफोन लगाकर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, डर जाएंगे, इनको बाहर खड़ा करो। तो हमको बाहर हॉल में सारा जो वायलिन सेक्शन म्यूजिशियंस, सारे म्यूजिशियंस के साथ ही हमको खड़ा किया था। और रफी साहब और सुमन जी सिंगर्स कैबिन, फर्स्ट टेक ओके
1: जी जी,
0: उन्होंने रिपीट ही नहीं करवाया।
1: बहुत सुंदर।
0: बाद में फिर साहब अंकल से मुलाकात हुई, मौसी ने बताया। उस वक्त ना मंदाकिनी जी एक गाना चला था ना रफी साहब का, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया
1: जी।
0: ये मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया।
1: बिल्कुल।
0: ये गा के मैं डांस करती थी और इसके पीछे किशोर काका पागल, क्योंकि किशोर काका और डैडी की बिल्कुल ऐसी दोस्ती जैसे आप समझिए एक माल के मणि
1: जी।
0: तो घर में आते थे और जब आते थे अमिता के साथ यही गाने में मुझे डांस करवाते थे
1: जी।
0: तो मौसी ने बोला तुम वो गाना गाती हो ना, ये वही है, जाओ पैर छुए।
1: अच्छा।
0: तो उस वक्त वो ना धनतेरस का दिन था मंदाकिनी जी, तो साहब अंकल ने वो बड़े बड़े 100 रुपए के नोट चलते थे उस वक्त, तो मुझे और प्रतिभा को 100 रुपए बख्शीश दिए नजराना।
1: वाह वाह।
0: ये एक हमारे गाने बजाने में एक ये एक तहजीब होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: हम जब अपने छोटों को सुनते हैं
1: तो उसको तो
0: हाँ एक नजराना
1: ये
0: देते
1: प्यार
0: हैं
1: का प्रतीक,
0: बिल्कुल,
1: स्नेह का प्रतीक,
0: और उनको एक प्रोत्साहन देने
1: जी,
0: के लिए
1: जी।
0: तो उन्होंने वो दिया और बोला जाओ मिठाई खाओ।
1: अरे वाह।
0: फिर मौसी से पूछा कि भोला जी की बेटी है ना, तो मौसी ने कहा इसको ना बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे से सिखाइएगा, ये बहुत नाम करेगी।
1: क्या बात है। तो, यानी आप भाग्यशाली थी कि आपकी शुरुआत रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ,
0: ये आज महसूस होता है,
1: शंकर जी के साथ हुई और इतनी बड़ी फिल्म में आपने गाया। तो वो गीत की दो लाइनें हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे और उसके बाद शायद यही हम सुने आपकी पसंद का।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और पता है मैं एक छोटी सी बात बताऊं मंदाकिनी जी, अभी एक 10 है ना बुलबुल।

0: अभी तो हम आपको सुषमा जी भी कह लेंगे तो कोई अति नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सुषमा श्रेष्ठ को ही सामने बैठा देख रहे हैं। तो आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी कई गीत गाए, यादों की बारात और तेरी है जमीन, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: क्या हुआ तेरा वादा
0: है ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब गाते गाते सिर्फ 11 साल की उम्र में आपको फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में नामांकित किया गया।
1: काश मिलता वो अवार्ड
0: लेकिन नामांकन भी बहुत बड़ी चीज थी।
1: बड़ी चीज़।
0: तो ये अनुभव कैसा रहा और पंचमदा के साथ काम करने का जो संगीत की आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?
1: मैं जो कुछ भी गाती हूँ आज, जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर मैं समझती हूँ कि डायनामिक्स हम जिसे गाने में कहते हैं, उतार चढ़ाव और बहुत कुछ मैंने पंचम दादा से सीखा, क्योंकि उनके साथ बहुत उठना बैठना होता था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ
0: जी।
1: एक तो क्या हुआ ना कि बर्मन चाचा मतलब एसडी बर्मन जी और डैडी, मैंने जो बताया आपको कि डैडी का जन्म कोलकाता में हुआ, तो वो पूरी तरह से अपने आप को वो बंगाली बाबू ही समझते थे अपने आखिरी सांस तक
0: जी।
1: और उनका सर्कल भी पूरा बंगाल
0: वैसे ही था
1: बिल्कुल। उस कारण भी मुझे ये सब बहुत प्यार करते थे, जैसे बर्मन चाचा, शक्ति सामंत जी, प्रमोद चक्रवर्ती जी, इतना प्यार करते थे कि डैडी के जाने के बाद भी कोशिश यही उनकी रहती थी कि उनके फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे एक लाइन ही मिल जाए। तो पंचम दास से फिर वही एक वही था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता को यूं ही। तो वो एक रिश्ता आप समझिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आ रहा।

0: एक अनोखा, वो मंदा के नहीं जी, क्या होता है ना, बड़ी देर के बाद जैसे जैसे बड़ी हुई ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, अपने होने का ना एहसास नहीं दिलाते। वैसा रिश्ता मेरा पंचमदा के साथ रहा
1: जी,
0: है और मेरे मरते दम तक रहेगा
1: जी। बहुत सुंदर।
0: मैं हमेशा उनसे कहती थी मंदाकिनी जी, मैं इतना प्यार करती थी उनसे, करती हूँ, करती रहूंगी, कि मैं हमेशा पंचमदा से कहती थी, मैं अगर बड़ी होती मैं आपसे शादी करती।
1: और क्या बात है,
0: इतने क्यूटली वो हंसते थे
1: जी।
0: तो मुझे लगता मेरे गाने में बहुत सारी छवि उनकी आती है, और बाल बराबर आशा का कि उन वो तो आई नहीं सकती, कोशिश बहुत की दादा ने, पर हाँ मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और हुई उनसे, बहुत सीखा। वो बुलाते थे सिटिंग्स में, रिकॉर्डिंग्स में, सिर्फ सुनने के लिए कि सुनो कैसी गाती हैं वो, मतलब खास तौर पर आशा काकी की रिकॉर्डिंग्स, कि सिर्फ सुनो सुनो और देखो। मैंने पहला गाना जो दादा के लिए गाया वो परिचय फिल्म, फिर गुलजार अंकल देखिए,
1: अरे वाह।
0: ये मैं कह रही हूँ वक्त कैसे एक खेल रचता है। मंदाकिनी जी, यहाँ एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको और मेरे श्रोताओं को बताना चाहूंगी
1: जी,
0: कि ये वक्त और कुदरत का जो खेला होता है ना, मैंने अंदाज में गाया, जीपीसीपी प्रोडक्शंस
1: जी,
0: शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी,
1: जी
0: सुमन कल्याणपुर जी, रफी साहब, शमी कपूर जी, सही
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: मैंने जब स्टेज पर गाना शुरू किया था 7 साल की उम्र से, तो मेरा सबसे पहला जो डुएट गाना था स्टेज पर, जो मैंने डुएट गाना गाया
1: जी,
0: वो फिल्म ब्रह्मचारी का गाना था,
1: हाँ,
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे
1: हर जबान,
0: और यही पूरा था ना,
1: हाँ,
0: जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस,
1: हाँ,
0: शमी कपूर जी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी, रफी साहब, सुमन कल्याण
1: जी,
0: वही पूरा देखिए खेला।
1: बिल्कुल।
0: मुझे नहीं पता था तब कि कुछ साल बाद मैं इसी सर्कल, इसी ग्रुप का एक हिस्सा बनूंगी,
1: अभिन्न हिस्सा बनेंगे,
0: और अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब, पहला और सबसे कामयाब गाना मैं इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर शुरू करूंगी।
1: जी,
0: देखिए
1: जी,
0: ये वक्त का खेला है।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने,
0: तो
1: कि वक्त ही है जो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हमारी पहचान बनाता है
0: उसके आगे
1: या हमारी
0: कुछ नहीं।
1: पहचान मिटा देता है।
0: एकदम।
1: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: चले।
1: तो सुषमा जी ही कहूंगी मैं फिर आपको अभी, क्योंकि मैं सुषमा जी को जी रही हूँ इस वक्त। थोड़ी देर बाद मैं पूर्णिमा जी को जीना शुरू करूंगी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी तब कि जब सुषमा जी पूर्णिमा जी आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ी देर में होगा। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गा रही थी तो आपने उस समय के सभी दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था, मसलन

0: शंकर जयकिशन में आप बताई रही हैं, मदन मोहन साहब के साथ,
1: हाँ।
0: सलील चौधरी, एस डी बर्मन काका जो आप कह रही हैं, नौशाद साहब के साथ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बप्पी लाहिड़ी, रविंद्र जैन, राजेश रोशन, कल्याण जी आनंद जी और चित्रगुप्त साहब के साथ भी आप,
1: बिल्कुल बिल्कुल। चित्रगुप्त अंकल के साथ मैंने काफी भोजपुरी गाने गाए।
0: अच्छा।
1: और उस वक्त आनंद मिलिंद उनको असिस्ट करते थे
0: जी, और बाद में आपने उन्हीं के सुपुत्र आनंद मिलिंद साहब के साथ बहुत गाने गाए।
1: अच्छा, मंदाकिनी जी, देखो मुझे आज कैसी कैसी बातें याद आ रही हैं
0: जी।
1: जो मैंने पहला शो अपना किया ना, पता आपको एक फिल्म आई थी औलाद,
0: जी।
1: उससे पहले एक फिल्म आई थी, शायद वो फिल्म का नाम भी लाडला था,
0: लाडला।
1: उसमें निरुपा रॉय जी थी शायद। एक गाना था उसका,

0: ये मैं इतना गाती थी सालों बाद। ये चित्रगुप्त अंकल का म्यूजिक है अगर मैं गलत नहीं हूँ।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: सालों बाद मैंने आनंद मिलिंद के लिए लाडला फिल्म में ही गाना गाया। देखिए आप देख रही हैं, मैं
1: समय खुद को दोहराता है।
0: देखिए एक गाना आया था कब तक हुजूर रूठे रहोगे औलाद फिल्म का, वो मैं इतना गाती थी। ये नहीं पता था कि ये जो मैं इतना गाती हूँ गाना, जिन म्यूजिक डायरेक्टर का ये गाना मैं गा रही हूँ, उन्हीं के बेटों के साथ सालों बाद मैं एक टीम बनाऊंगी, एक बहुत ही सफल टीम।
1: बहुत बहुत,
0: ये वक्त का खेला ये होता है।
1: और ये आपसे बात करके हम भी महसूस कर रहे हैं कि देखिए वक्त आपको किस तरह से कहां कहां जोड़ता है
0: ना।
1: बिल्कुल।
2: बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, अगले हफ्ते इस बातचीत का दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा अगले हफ्ते का। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: बॉम्बे टॉकीज,
4: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहा है तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जम्बो जेट, जम्बो जेट, लंडन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्ना भेट, जम्बो जेट सोई।
3: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।

ये आकाशवाणी है। अब आप वाहिदुल्लाह खान से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने वरंगल के ज़ेर तामीर मामनू एयरपोर्ट का नाम रखने के लिए आवाम से तजावीज़ और मशवरे तलब किए हैं। मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय ने हैदराबाद में मुनक़िदा 20वें रोज़गार मेले के दौरान नए मुंतखब उम्मीदवारों में तखर्रुनामे तकसीम किए। नई दिल्ली में मुनक़िदा विकसित भारत कॉन्फ्रेंस के दौरान तेलंगाना के नायब वज़ीर-ए-आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत का हदफ कौमी मईशत में अपने हिस्से को दुगना करते हुए 10% तक पहुंचाना है और साबिक वज़ीर हरीश राव ने दरिया कृष्णा के पानी के अपने जायज़ हिस्से को इस्तेमाल करने में नाकामी पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने समाजी रबते की साइट एक्स के

0: एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी ए कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवोल्ट की एक यूनिट से 25 किलोवोल्ट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 3 बड़े पद जीते। ABVP के यश डबास अध्यक्ष चुने गए जबकि रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने डूसू चुनाव में ABVP की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ SIR 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా BLO కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Entrepreneur क्या होता है? Who is an entrepreneur? उद्यमी कौन है? उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई है. एक उद्यमी वो होता है जो किसी उद्यम के जोखिम को व्यवस्थित, प्रबंधित और ग्रहण करता है. उद्यम एक उपक्रम है, विशेष रूप से एक जिसमें उत्पादन के न्यूनतम चार कारक अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी शामिल है. जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर एक व्यवसाय की कल्पना करता है, उपक्रम उद्यम स्थापित करने के लिए साहसिक निर्णय लेता है, उत्पादनों के विभिन्न कारकों को समन्वय करता है और इसे एक शुरुआत देता है. तो इसमें आर्थिक गतिविधि शुरू करने में जोखिम और नवाचार लेने की इच्छा शामिल है. उद्यमी व्यवसाय उद्यम के मालिक होते हैं जो पूंजी का निवेश योगदान करते हैं और व्यावसायिक जीवन के दौरान अनिश्चितताओं का जोखिम उठाते हैं. उद्यमी और उद्यम जुड़े हुए हैं. एक उद्यम की सफलता उद्यमी पर निर्भर करती है. वो एक्शन ओरिएंटेड और अत्यधिक प्रेरित है. उनके पास लाभ

के लिए आवश्यक इनपुट संसाधन एकत्र करने के लिए व्यावसायिक अवसरों का मूल्यांकन करना और सफलता की गारंटी के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने की क्षमता है। उद्यमी उत्पादन का मुख्य कारक है, वो नवचार उन्मुख है। वो उत्पाद के संबंध में निर्णय लेता है, अर्थात क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करे, कहाँ उत्पादन करे और उपभोक्ता कौन है या बाजार कहाँ है या किसके लिए उत्पादन करना है। ये उद्यमी है जो उत्पादन के सभी कारकों को जुटाकर उत्पादन प्रक्रिया शुरू करता है। यह व्यवसाय की सफलता या विफलता या लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। एक उद्यमी जिसके पास उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संगठनात्मक कौशल, जिम्मेदारी की इच्छा, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, लचीलापन, ऊर्जावान और मेहनती, दूरदर्शिता, साधन संपन्नता और चतुराई है, उद्यम चलाने में सफलता की बेहतर संभावना है। उद्यमी की व्यक्तित्व विशेषताएं एक सामान्य व्यक्ति या मनुष्य से काफी भिन्न होती है। ऐसी कुछ विशेषताएं जन्मजात होती है और कुछ अर्जित की जाती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत आमतौर पर आयोजित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की मदद किसी व्यक्ति में लक्षणों को और विकास किया जा सकता है, यदि वे कुछ हद तक उसमें मौजूद हो। दोस्तों, मैं अब उद्यमी बनने के गुण बताऊंगा, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक उद्यमी बनने के लिए कुछ गुण आपके पास जन्मजात होते हैं और कुछ गुणों को आप अभ्यास करके और अपने अनुभवों के आधार पर विकसित कर सकते हैं। हम यहाँ एक उद्यमी बनने की योग्यता व गुणों के बारे में बता रहे हैं जिसे आप अपने अंदर विकसित करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आइए उद्यमी के विभिन्न गुणों और विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। सोचने की शक्ति, यदि आप ठीक से सोचने और विश्लेषण करने में सक्षम हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक उद्यमी बन सकते हैं। आप भी अपने बिजनेस को अरबों टर्नओवर में बदल सकते हैं। व्यापार करने के लिए पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता, आपकी सोचने और समझने की शक्ति अधिक मायने रखती है। इसीलिए अपने आइडिया के बारे में सोचे, विश्लेषण करें और उसे लागू करें। निर्णय लेने की क्षमता, एक उद्यमी को व्यवसाय चलाने के लिए कई निर्णय लेने पड़ते हैं, इसीलिए आप में समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको सही समय और सही जगह पर निर्णय लेना होता है। यह क्षमता बिजनेस की यात्रा में आपका भविष्य तय करती है। निर्णय लेने की क्षमता एक उद्यमी की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है और विभिन्न बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। यदि आपके अंदर पूरी सृष्टि और लोगों के लिए कुछ करने की भावना हो, तो आप उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करना उद्यमी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आप बिना सेवा भाव के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते। समाज को कुछ मूल्य दिए बिना आप एक सफल उद्यमी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए लोगों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें कुछ वैल्यू दें। धैर्य रखना, धैर्य एक उद्यमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी आप एक उद्यमी बनने के बारे में सोचें, तो ये ध्यान रखें कि जब भी मैं उद्यमी बनूंगा, धैर्य रखूंगा। जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। धैर्य के बिना उद्यमी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पहला परीक्षा होता है और उसके बाद सफलता मिलती है। आपको धैर्य रखते हुए सीखते रहना होगा और बाजार की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवाओं में सुधार करना होगा।
कड़ी

0: मेहनत करना। अगर आप में मेहनत और लगन की ताकत है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। उद्यमी बनने के लिए यह सबसे जरूरी गुण है। कड़ी मेहनत के बिना आप उद्यमी नहीं बन सकते, क्योंकि उद्यमिता का दूसरा नाम मेहनत है। एंटरप्रेन्योरशिप आपसे 100% मांगती है। 100% दिए बिना आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने मन में यह तय कर ले कि मुझे कड़ी मेहनत करनी है और सफल होना है, ईमानदारी रखना है। आप ईमानदार है, इसका मतलब है कि आप एक सफल उद्यमी बनने में सक्षम है। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप निश्चित रूप में असफल होंगे और पैसे कमाने के लिए आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। ईमानदारी के बिना कोई भी व्यवसाय बाजार में अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसीलिए यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको ईमानदार बनना चाहिए। कुशल प्रबंधन। सफल उद्यमी वह है जो उद्यमी के सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक संभाल सकता है। यह व्यवसाय का नियम है कि प्रबंधन जितना बेहतर होगा उतना ही अधिक अच्छा प्रदर्शन और विकास होगा। उद्यमिता की नींव बिजनेस प्रशंसा और प्रबंधन पर टिकी हुई है। यदि आपका व्यवसाय अच्छा है लेकिन इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। इसीलिए प्रबंधन कौशल में सुधार करें। मिलकर काम करने की शक्ति। एक सफल उद्यमी वह है जो अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करता है, उनके सुख दुख में सहायक बनता है, सभी को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानता है और सभी के साथ मिलकर काम करता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना। एक उद्यमी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा या नई तकनीक के कारण असफल हो जाएगा। कुशल नेतृत्व। एक सफल उद्यमी की पहचान उसकी नेतृत्व योग्यता है। एक सफल उद्यमी वो है जो सही समय और सही जगह पर सही निर्णय लेता है। नेतृत्व गुण हर इंसान में होता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने वाला और साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति ही एक वास्तविक उद्यमी होता है। अगर आप में ये उद्यमशीलता की योग्यता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप सीखकर और अभ्यास करके इसे अपना सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। With this, we conclude today's program. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye.
1: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
2: ఎస్ దోస్త, మరి విన్నారు కదా ఇవాళ మన లంహే కార్యక్రమంలో ఆర్జే చేతన్ చెప్పినటువంటి విశేషాలని. మరి మన ఆల్ టైమ్ హిట్స్లో బ్లాక్ బస్టర్ పాటలు వినేసేద్దాం బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఈ చిన్న కమర్షియల్ బ్రేక్ తర్వాత.
3: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా BLO కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुदकफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 600 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त को मंजूरी दे दी है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। 2 रोजा शुमाल मशरिकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 नागालैंड में इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज पर तवज्जो मरकूज की गई है। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को फिर से मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। अंडमान निकोबार जजायर साहिली आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र और तेलंगाना में कल तेज बारिश होने का इम्कान है और 20वें एशियाई गेम्स बाजाबता तौर पर जापान में शुरू हो गए हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगे जीतने वाली मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल भारतीय दस्ते की क्यादत की। अब खबरें तफसील से। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए मुकर्रर किए गए नौजवानों को ये तकर्रुरनामे सौंपे गए हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुदकफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया। वज़ीरे आज़म ने कहा कि हालिया बरसों में मरकजी सरकार ने नौजवानों को हुनरमंदी से आरास्ता करने और मुस्तकबिल के लिए तैयार करने की खातिर उन्हें मौके फराहम करने पर लगातार तवज्जो मरकूज की है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार प्राइवेट शोबे

0: रोजगार के मौकों को तेजी के साथ वसत देने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मकसद से तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के अखराजात के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। उम्मीद है कि मस्कूरा स्कीम से तकरीबन 2 करोड़ नौजवान अफराद को पहली मर्तबा अफरादी कुव्वत में शामिल होने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता चंद वर्षों में तकरीबन 40 मुल्कों के साथ आज़ाद तिजारत के समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिससे मुल्क के नौजवानों के लिए मौकों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के तिजारती समझौतों से नई साझेदारियों की राह हमवार होती है और मुल्क के कारोबारी अफराद को मार्केट भी दस्तयाब होती हैं। नेज नौजवानों के लिए करियर के नए इम्कान पैदा होते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको निज़ाम मौजूद है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन अखराज में भारत का फीकस हिस्सा आलमी औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में माहौलियात के मुस्तकबिल और आबो हवा से मुतालिक अवामिल के बारे में बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने ये बात कही। वज़ीरे आज़म ने कहा कि कार्बन अखराज के लिए अक्सर व बेशतर तरक्की पजीर मुल्कों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो मुनासिब नहीं है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने पेरिस में मुनक़िदा COP21 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले ही पूरा किया है। भारतीय रेलवेज ने शुमाल मशरकी रेलवे के लखनऊ डिवीजन के 607.7 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर चौथे मरहले के कवच बंदोबस्त की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। रेलवे की वजारत ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए दस्तियाब सेफ्टी के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। रेल ट्रैफिक की सेफ्टी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया कवच खुदकार तहफुजाती निजाम है, जिसे मुल्क में ही तैयार किया गया है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। भारतीय रेलवेज ने बस्ती रेलवे के सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बंदोबस्त को मंजूरी दी है, जिस पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इसके अलावा इस डिवीजन में सिग्नलिंग के जदीद तर्ज के निजाम से रेलवे के मुतालिका सिग्नल बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सकेगा और कवच निजाम पर अमल दरामद की भी सहूलत होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन डूसू के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने 3 बड़े ओहदों पर जीत हासिल की है। एबीवीपी के यश डवास ने सदर के ओहदे की सीट जीत ली है, जबकि रिया छाबड़ी ने सेक्रेटरी और लक्ष्य राज सिंह ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर कामयाबी हासिल की है। नायब सदर के ओहदे पर आजाद उम्मीदवार दीपांशु शौकीन कामयाब हुए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाब में कामयाबी पर एबीवीपी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कामयाबी मुल्क मुकद्दम की पॉलिसी में नौजवानों के पुख्ता अकीदे की एक अलामत है। उधर वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने पैगाम में कहा है कि यह जीत मुल्क मुकद्दम के एबीवीपी के नजरिए में नौजवानों के पुख्ता एतमाद और तलबा की बहबूद के तई उसके अहद की अक्कासी करती है। इंतखाबी कमीशन कल कौमी राजधानी दिल्ली में सभी पोलिंग मराकज के मकामात पर खसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा। दिन भर की इस मुहिम का मकसद वोटर फेहरिस्तों में नए नाम शामिल करने के साथ साथ तफसीलात में इसलाह करने, नेज वोटर फेहरिस्तों में नाम शामिल किए जाने या हटाने पर एतराजात दाखिल करने में लोगों की मदद करना है। मुतल्लिका दरखास्तें वसूल करने के लिए बूथ लेवल अफसर BLO नामजद पोलिंग मराकज पर मौजूद रहेंगे। नए वोटर का नाम शामिल कराने के लिए Form 6, एतराजात दाखिल करने के लिए Form 7, जबकि वोटर फहरिस्त में किसी तरह की इसलाह करने या ताजा जानकारी शामिल करने के लिए Form 8 दाखिल किए जा सकते हैं। कौमी राजधानी में जारी मौजूदा SIR अमल के बारे में मीडिया से खिताब करते हुए दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने यह वजाहत की कि चुनाव

0: रजिस्ट्रेशन अफसर ERO अलग अलग केस की बुनियाद पर समाअत के दौरान नोटिस में बयान की गई दीगर दस्तावेजात पर भी गौर कर सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। एक ऐसा सफर जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इसका सिलसिला जारी है। सेवा से सुशासन के नजरिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ की खातिर मुसलसल काम कर रही है। आज हम अपनी खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान में इस बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि प्रगति प्लेटफॉर्म ने किस तरह लोगों की जिंदगी में यकसर तब्दीली पैदा की है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म का आगाज किया था, जिसका मकसद रियासतों और मरकजी वजारतों के साथ शराकत दारी में उनके बराह रास्त और बरवक्त जायजे के जरिए प्रोजेक्टों, स्कीमों और शिकायात के इजाले में तेजी लाना था। एक

0: नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म का आगाज किया था, जिसका मकसद रियासतों और मरकजी वजारतों के साथ शराकतदारी में उनके बराह रास्त और बरवक्त जायजे के जरिए प्रोजेक्टों, स्कीमों और शिकायत के इजाले में तेजी लाना था। एक दहाई में प्रगति से फैसलासाजी में तेजी आई है, बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों में ताखीर की वजूहात का हल निकाला गया है और जवाबदेही का एक मजबूत कल्चर पैदा हुआ है। फरवरी में इस साल राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वजीर आजम की सतह पर प्रोजेक्टों की तफसीली निगरानी से 85 लाख करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों में हायल रुकावटों को दूर किया गया और उनमें तेजी लाई गई।
1: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
0: एम्स बीबी नगर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने उजागर किया कि किस तरह प्रगति तरीकेकार ने एम्स के लिए पानी और बिजली की सप्लाई जैसे इंतहाई अहम मामलात को हल करने में मदद की।
2: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
0: ये प्लेटफॉर्म मरकज रियासतों और मरकजी वजारतों को एक वाहिद डिजिटल राबते मिलाकर इमदाद बाहमी वफाकियत को फरोग देता है। वजीर आजम ने अब तक प्रगति के तहत 53 मीटिंगों की सदारत की है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
3: आज नागालैंड में नागा यूनाइटेड विलेज चुमो के दिमा में दो रोजा शुमाल मशरकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 से खताम पजीर हुआ, जिसमें पूरे शुमाल मशरक से पॉलिसी साज, माहरीन तालीम और मुंतजमीन यकजा हुए और उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के नफाज पर तबादला ख्याल किया। इस कॉन्क्लेव का इनेकाद तालीम की वजारत के साथ इश्तराक में नागालैंड हुकूमत ने किया था और इसका मौजू था कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का नफाज, शुमाल मशरकी रियासतों के लिए नजरिया, चैलेंज और इम्कान। आज इसकी अख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए त्रिपुरा की आला तालीम, पंचायतों और इंतजामी उमूर के वजीर किशोर बर्मन ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मौसर नफाज पर जोर दिया, ताकि शुमाल मशरक में तालीम को ज्यादा हुनरमंदी पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाया जा सके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के दिल्ली जोनल दफ्तर ने इज्तिमाई सरमायाकारी की स्कीम के ताल्लुक से मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर माली धोखाधही के सिलसिले में एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स अबूरी तौर पर कुर्क कर लिए हैं, जिनकी मौजूदा मार्केट कीमत 42 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईडी ने मरकजी जांच ब्यूरो की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर की बुनियाद पर छानबीन शुरू की थी। बाद में सीबीआई ने गैर कानूनी सरमायाकारी स्कीम चलाने में मुलविस होने की बिना पर 33 मुलजिम अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म और एक जिमनी फर्द जुर्म दाखिल की थी। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मौजूदा मजबूत ताल्लुकात के जरिए अपनी शराकतदारी को तकवीत बख्शने के इम्कान हैं। आज नई दिल्ली में तरक्की पजीर ममालिक के लिए तहकीक और इत्तलाआती निज़ाम की जानिब से मुनक़िदा उभरते आलमी निज़ाम में भारत नेपाल ताल्लुकात का नए सिरे से तसव्वुर के मौजू पर एक बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर वागले ने कनेक्टिविटी और इक्तिसादी इश्तराक को मुस्तहकम करने और दोनों ममालिक के दरमियान खातिर ख़्वाह इम्कानात को बरूएकार लाने की अहमियत पर जोर दिया। भारतीय मौसमियात के महकमे आईएमडी ने कल अंडमान निकोबार जजायर, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम माहे, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कल मराठवाड़ा, जैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल, मशरकी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। आज जापान के मिजुहू पार्क एथलीट स्टेडियम में 20वें एशियन गेम्स की शाह नारुहितो की जानिब से आगाज किए जाने के बाद शुरुआत हो गई है। 2 घंटे की तकरीब में जापान के शाही कुनबे, खेलों से मुतालिक अहदेदारान और ओलंपिक की एशियाई काउंसिल के सदर शेख जोआन बिन हमद अल सानी ने शिरकत की। 501 मेंबरान पर मुश्तमिल भारतीय दस्ते की क्यादत 2 मरतबा ओलंपिक मेडल जीत चुकी मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जापान में एशियन गेम्स के आगाज के बाद भारतीय खिलाड़ियों को अपनी नई ख्वाहिश

पेश की हैं। अपने पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि हर एथलीट ने बेपनाह मेहनत की और लगन और अज़्म का मुजाहरा किया है और भारत उन पर फख्र करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एथलीट्स गेम्स में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेंगे। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया है। वज़ीरे आज़म ने आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 600 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त को मंजूरी दे दी है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। दो रोजा शुमाल मशरकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 नागालैंड में अख्तितम पजीर हो गया है, जिसमें 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज पर तवज्जो मरकूज की गई। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी को फिर से मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। अंडमान निकोबार जजायर साहिली आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल महाराष्ट्र और तेलंगाना में कल तेज बारिश का इम्कान है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

मशाल फिल्म के इस गीत को सुनकर आपको चार फुटपाथी आवारा लड़के याद जरूर आए होंगे, जिसमें अनिल कपूर भी थे और एक थे गुलशन ग्रोवर।

गुलशन ग्रोवर का नाम जब भी लिया जाता है तो अक्सर बैडमैन की उनकी इमेज को ज्यादा उभारा जाता है, लेकिन दोस्तों सच ये है कि उन्होंने हर कैरेक्टर को एक नया गेटअप दिया है।

गुलशन ग्रोवर मध्यम वर्गीय परिवार से और उनका बचपन दिल्ली में बीता। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही एक्टिंग का शौक उन्हें लग चुका था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उनके इस शौक को हवा मिली और उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर कई नाटकों में अभिनय किया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद गुलशन ग्रोवर मुंबई की ओर अपना रुख कर चुके थे और यहाँ आकर उन्होंने फिल्मी ख्वाबों को फिल्मों में अभिनय के जरिए हकीकत में बदलने की ठान ली।

मुंबई में एक्टिंग स्कूल में उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी और जब तक इंडस्ट्री में काम न मिला तब तक अन्य छात्रों को बतौर टीचर उन्होंने एक्टिंग के गुर भी सिखाए। उनके स्टूडेंट में उस समय संजय दत्त भी थे। जब सुनील दत्त साहब ने अपने बेटे संजय दत्त को लेकर फिल्म रॉकी लॉन्च की थी तो उसमें संजय दत्त के दोस्त की भूमिका के लिए उन्होंने गुलशन ग्रोवर को ही सिलेक्ट किया था, यानी गुलशन ग्रोवर की पहली फिल्म थी रॉकी।

गुलशन ग्रोवर शुरू ही से अपनी योग्यता को जानते थे, इसलिए उन्होंने हीरो नहीं बल्कि एक बेहतरीन एक्टर बनने के लिए खुद को तैयार किया। हम 5 में उनकी एक्टिंग देखकर अभिनेत्री शबाना आजमी ने निर्माता निर्देशक मोहन कुमार की फिल्म अवतार के लिए गुलशन ग्रोवर को रिकमेंड किया और बाद में सिप्पी फिल्म्स की सदमा और एफसी मेहरा की फिल्म सोहनी महिवाल में गुलशन ग्रोवर ने अपनी अदाकारी की मिसाल कायम की।

0: गुलशन ग्रोवर ने फिल्मकार महेश भट्ट के साथ भी काम किया। फिल्म अर्थ में गुलशन को महेश जी ने छोटी सी भूमिका दी थी, लेकिन बाद की फिल्मों में गुलशन के भीतर के कलाकार को उन्होंने नए अंदाज में पेश किया। इसकी मिसाल थी फिल्म सर। यही नहीं, सुभाष घई ने भी गुलशन ग्रोवर को मौका दिया और पर्दे पर एक अनोखा बैटमैन पेश किया।
1: करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम।

यूं तो गुलशन ग्रोवर ने हिंदी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाई फिल्मों में काम किया, जिसमें खास हैं साउथ की फिल्में। लेकिन बॉलीवुड के इस बेहतरीन अदाकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाए हैं। फ्रांस, इटली, जर्मन, यूके और हॉलीवुड की फिल्मों में उन्होंने बखूबी काम किया है। फिल्म जंगल बुक ने भी गुलशन ग्रोवर को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई है। फिल्म मारी गोल्ड, जिसे मेरी गोल्ड भी कहा जाता है, इस फिल्म में सलमान खान के साथ उन्होंने एक नया किरदार पेश किया है। हालांकि सलमान के साथ गुलशन ग्रोवर ने चंद्रमुखी और कुर्बान जैसी फिल्मों में भी काम

दोस्तों, गुलशन ग्रोवर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, लेकिन वो मानते हैं कि उनके पहले सईद जाफरी, कबीर बेदी और परसिस खंबाटा ने भी हॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है।

0: दोस्तों, आपको याद होगा कि गुलशन ग्रोवर ने यूं तो कई फिल्मों में और भी कैरेक्टर निभाए हैं, लेकिन सन 2006 में रिलीज गैंगस्टर, 2010 में रिलीज हुई फिल्में हैं नॉकआउट और प्लेबैक, 2011 में आई एम कलाम और 2012 में एजेंट विनोद में आपने उनका अभिनय जरूर देखा होगा। और फिल्म एजेंट विनोद के बाद भी गुलशन ग्रोवर की अभिनय यात्रा बदस्तूर जारी है। दोस्तों, आपने इन्हें फिल्म राजधानी एक्सप्रेस, बुलेट राजा और यारियां फिल्मों में भी देखा होगा। ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने अभिनेता गुलशन ग्रोवर पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, अब दीजिए इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।